0: Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama Wong Sama. Namaste Bollywood, Sandakan FM.
1: और मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? मैं अपना प्यार एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती.
2: हाँ, तुम्हें फीलिंग का तो स्टीडी बा. ada banyak lagu-lagu Bollywood.

0: से बॉलीवुड प्यार प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल।
1: इसी में वाहुजु मिंगु di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.
2: Kuch kuch hota